गुरु रामदास पातशाह की सिफत करते हुए कि समर्थ गुरु ने सिर के उत्ते हथ रखिया है। जिस तरह गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक साहब

भगती ते शक्ति दा सोमा समझ के दुनिया दे लोकां ने कई वारी बर्बाद करना चाहिया, पर जिन्ना ने बर्बाद करन दी कोशिश कीती समय दे नाल ओ आप ही बर्बाद हो गए। अहमद शाह अब्दाली उन्हें भी जदू देखिया कि सिखां दी शक्ति बड़ी वध गई, एक दिन इन्हां दा राज हो जाएगा, इस वास्ते सिखां नूं खत्म करन दी बड़ी कोशिश कीती, पर पेश ना गई। ता पता लगा कि हरमंदर साहब सरोवर विच इशनान करके सिख फिर नवे नरोए हो जांदे ने, शक्ति लैंदे ने। ता अहमद शाह अब्दाली ने सरोवर परवा दिता, बड़ा कुछ कीता इथों तक के मसा रंगड़ दरबार साहब दे अंदर बैठ के हुक्का पीण लग पिया ते कंजरियां नचाण लग पिया। जदों सिखां नूं पता लगा ते खून खौल उठिया।

जे तुहाडा हर मंदिर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिन्हों ये पता लगे कि साडा हर मंदिर कैद है, असी हर मंदिर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरिमंदर साहब नूं आजाद करके रहना है। एक लेक मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखां ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपनी जवाना दे नाल तुरे ने। अमृतसर दे लागे बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखां नूं जान प्यारी नहीं, अपना हर मंदिर प्यारा है। अपनियां जाना वारियां अते बाबा दीप सिंह दा जदों सिर तों सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हर मंदिर नूं आजाद कराया। क्यों कि बाबा दीप सिंह जी जानदे ने इह गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर तां खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हर मंदिर नूं बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर ए तां गुरु दी नगरी है जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा।

मैं ता काची दे मानुख अभिमानी इस कची दे दे हंकार च मता होया गलतियां करदा चला जा। स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरख मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रसन जन्म गवाया दुख भजन जग जीवन हर राया। मेरे वाहिगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है वह आत्मक जीवन भी बख सकते। सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कादे लई। कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया सी किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है किहड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया। पावन तरन तारन चिंता मर एक निमुख न ए मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहब जी असी तां एडे वड्डे गुनाहगार हां। जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी पाओ भगतनी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना की। इन्हें अकिरत कहन कि जिसने जिंदगी श्वास खान पान भोजन पहराण सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा है। लोगों के धन वाल वेखते हैं लोगों के शरीर वाल वेखते हैं पर धन पर धन परती निंदा बुराइयां भी लोगों दी वेखियां ने अपनियां नजर नहीं आई। लोगों की निंदा करते रह गए ते अपनियां नेकियां दी फड़ा मारते रह गए अपनियां बुराइयां वल ध्यान ना कीता पर अपवाद ना छूटे लोगों नाल झगड़े करते आ रहे। आवा कौन होत है खुण खुण ए प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़ मुड़ के जमना मरना बनिया होया आना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ। जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब की गल करते ने उथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर ते मेथों एक पल भी जुड़िया नहीं जा मन करके मेरा उथे फेरा नहीं पै लगता टिकया नहीं जाता मैं। लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोहंकार आदिक ते इन्हां दे मारे हुए जिहड़े बुरे लोग ने तिन संग सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नितला बणिया। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे मोह माही जिंदगी विच कट्ठा मैं की कीता काम कट्ठा कर ले क्रोध कट्ठा कर ले माया कट्ठी कर ले हंकार कट्ठा कर लिया दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही ए नेकी दे काम जिहड़े सुपने विच भी नहीं पए आउंदे उन तां मैं जीवन च की कर ले नेकी ते पढ़ाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तो साडा शीशा बनाउण लगियां कमाल करती। साहब कहंदे ने चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डुबदे पत्थर तारे। समुंदर सागर जिन्ना कु पानी नाल भरिया ए तो भी बहुते अवगुण ने साडे कदे कदे ध्यान मारदे रहिए बहुत फर्क पै सकदा। साहब पंचम पातशाह कोल पिशावर की साख काबल की संगत आई सी सूबा सरहद की संगत आई सी एक सिख ने उठ के बेनती की साहब जी गलतियां बड़ियां गुनाह बड़े हो जाते। साहब कहन लगे फिर की होया कहन लगे महाराज किवें बख्शे जावांगे। साहब कहन लगे इस तरह करो जदों अगले साल आओगे ना पूरे साल का हिसाब करके लिया है जिहड़ी गलती ते गुनाह होए उहदा भी हिसाब कर लेना लिखी जाना नाल नाल जिहड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो भी लिखी जाना। चले गए साल बाद आ गए महाराज ने पुछिया याद कराया क्यों भाई गुरमुखो तुसा एक सवाल किया सी ते असां तुहानू कहा सी कि अपनियां वहियां बनाओ खाते बनाओ बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ खाते बनाए ने कि महाराज बनाए तां सन लियाओ फिर विखाओ कि महाराज लियांदे कोई नहीं क्यों नहीं लियांदे कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया। कमाल है भाई तुहानू लिखण नू कहा सी तुसा वहियां ते खाते बनाए लिखिया क्यों नहीं कि महाराज गल ए है कि जिसने गुनाह किया लिखन लगे ते सोचिया भी उथे महाराज की हजूरी च संगत च पढ़ के सुना पेगा नंगे हो जावा शर्म आ गई लिखन तो शर्म आ गई नहीं लिखिया। महाराज कहन लगे फिर पुन कर्म भी कोई नहीं किया पाप कर्म तो लिखन लगिया शर्म आ गई कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई कि जे तां करांगे तो लिखने पैणगे महाराज का हुक्म है जे लिखांगे तो सुनाने पैणगे नंगे हो जावा। इस करके पाप कर्मा तो बचते ही चले गए होए ही नहीं तकरीबन तकरीबन बचे ही रहे हैं साल भर
महाराज कहने लगे जे पाप कर्म नहीं किए फिर पुन कर्म का की हाल रहा कि महाराज वो कुछ कुछ होए जरूर ने पर लिखन लगिया शर्म आई जे लिखे कदे कदे एक अद्धा तो मसा हुंदा सी ते जे कहीए भी लिखीए ते आखीए नाले तो हंकार होवेगा ते नाले की गिनती देंगे महीने च एक पुन कर्म होया सी के महीने च दो होए सन शर्म दे मारे हैं महाराज क्योंकि पुन कर्म बड़े थोड़े सन वो नहीं लिखे गए ते पाप कर्मा तो तुहाडे लिखण दे काम ने बचा लिया कि जे लिखांगे ते नंगे होवांगे इस करके ना करिए ते ना लिखिए बिल्कुल जिसले बंदा आत्म सर्वेखण वल लग जाए ना अपने आप वल वेखण लग जाए अपने आप नूं भोखण लग जाए उदो पापां तो बच जाए इस करके साहिब दे दर दे उत्ते हथ बन के खड़ा अपराधी होके खड़ा सचे पातशाह कृपा कर लो मेरे कोलो तां कंचन नाली मैं जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर कोले खुशी मन आंदा सलाया हर कब चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सा मेरे तू कृपा करके बख्श ले मैं ता अवगुणी गुनाकार पापी हां जिवें जानना है हों अपराधी गुनाकार हों बेमुख मंदा भाई गुरदास के कथन अनुसार ए अरदास लेके बह जाइए कुछ पाप कर्म तो बच सकांगे कुछ पुन कर्म वाल प्रेरे जा सकांगे कदे अपने आप से गुरबाणी अनुसार गुरबाणी की कसवटी नाल अपने आप से झाती मार लिया करिए वेख लिया करिए किथे को बैठे हां की हाल है किवें बख्शे जावांगे बख्शे जाण वास्ते अरदास बहुत वड्डा साधन है सिख दे कोल ते अरदास करन वास्ते

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

सीना मणे कर भेत दे भंडार दा, सीना मणे कर भेत दे भंडार दा, सीना बने कर पेट दे भंडार दा, सच के दिल में डड़े नु सौगला, सच के दिल

नामदान स्नान दड़ाए नामदान स्नान दड़ाए मिठा बोलन निवचलन हथों देके हथों देके भला मनाए थोड़ा सवना खावना

मत्से रंगड़ तक पहुंचन दी स्कीम कर ली। एक पुरानी थे तो ठीकरियां इकट्ठियां कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे नू सुट चौधरी जट्टां वाला भेस बना लिया। तलवारा चोलियां दे हेठ लुका लिया ते हरमंदर साहब वल नू तुर पए। दोनों शेर दर्शनी ड्योड़ी जा पुजे। बूहे दे सज्जे हाथ लगदी बेरी नाल सिंघां ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी नू मोढ़ियां दे चुक लिया। पहरेदारा ने सोचिया कि किसे पिंड दे नंबरदार मामला उतारन वास्ते आए होणगे, सो किसे ने भी उहनां नू रोकिया नहीं। भादों दी दुपहर होण करके उस वक्त जोर दी नेरी वग रही सी। सिंघां ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा कीता, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघां दा वार खाली ना जावे। की वेखदे हन कि हंकारी मस्सा पलंग ते बैठा हुक्का पी रहा है, कंजरी नचदी पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघदे ही बोरी नू पलंग दे थले सुट दिता। जो ही मस्से ने बोरी नू वेखण वास्ते अपना सिर हेठा झुकाया ता भाई महताब सिंह ने तलवार दे इको वार नाल ही मस्से रंगड़ दा सिर वगा के हे ओ

कि सत संगत विच बह के जपन दा कितना लाभ है। साधु दी संगत जपन वालियां दी संगत विच बह के जपेंगा तो तैनू एडियां कालना नहीं कालन दी लोड़। कोई कर्म कांड शरीर नू कष्ट देन दी लोड़ नहीं, क्योंकि संत के संग नहीं किसी घाल। जदों साध के संग नहीं किसी घाल, दर्शन पेटत होत निहाल। महापुरखां दे सत संगत दे दर्शन करके भी पापां दी मैल कटी जांदी है, मन जुड़ जांदा है गुरु दे चरणां विच। जिस तरह आख्या तिना देख मन चाओ उठंदा। जुड़िया होया दे दर्शन करके मन अपना भी गुरु चरणां विच जुड़ जांदा है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, साध कै संग नहीं किसी काल। तेनू दोतियां कालना नहीं कालनिया पैणगियां, संगत दे दर्शन करके भी तू निहाल हो जाएगा। दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इया उआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेल। ए लोक भी सुखी हुंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है। असी निरंकार दे चरणां तो विछड़े होए हां, ते जपन वालियां दी संगत जदों मिल जावे तां साडा मन जुड़ जांदा है। भाव विछड़िया होया गुरु दे चरणां नू मिल पैंदा है। सात संगत बोलो श्री, ते फिर जो इच्छा है सोई फल पावे। जिसने भी फिर भाई निरंकार दी सच्ची दरगाह विचों मंगया है, फिर उसकी भावना पूरी हुई है। वो कदे इस दर तो खाली नहीं मुरिया। अनेकां मिसालां हन कोट अपराधी संत संग उधरे, करोड़ां अपराधियां दा उधार हो गया सत संगत विच आके। ते फिर जेड़ी वस्तु किसे ने मंगी,

परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नू सत संगत विच जाना।

कर देश राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री का नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया कर दी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहले ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदियां राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जाण तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई है। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिए। ये रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौ गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पई। राजा इस दे सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चों बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खरावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दिती ते बाहर जंदरा मार दिता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति होई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खड़ाम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गायब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खड़ाम लब पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। साथ संगत बोलो श्री जां। एक मन होके एकागर चित होके संगत ने अरदास कीती, वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाम किथे है। उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। अख्या ये खड़ाम, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है ते ये कित्थों आ गई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। अख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लिए भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लिए भी मंगदी हां, तेरे लिए भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सवारे ते मेरा भी सवारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहा। इन्हां पगतियां नूं सिद्ध कर दिता कि जो इच्छा सोई फल पावे। प्यारी सत संगत, जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।